Cosumita, drumada la șobilii, suha sinii, suma dura mașinii.

FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि तदनुसार 1 जून सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम था बरसात। अगला गीत आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर को। फिल्म का नाम था दिल से। अगला गीत आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस वर्षे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जीएल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
2: जी,
4: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
2: जी,
4: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
2: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
4: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना।
2: जी,
4: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
2: जी,
4: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।

0: जी आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं जो भी ध्वनि आधारित किताबें हो
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे? लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से
1: जी
0: जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक, आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित है
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल,
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसी

0: भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में।
1: जी, ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIIT NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा की वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी,
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है।
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है।
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी,
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी,
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी,
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो।
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए।
1: जी,
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी,
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल,
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल है।
1: जी,
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी,
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIIT के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIIT के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी,
0: और एक और सरल उपाय है।
1: जी,
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स CIIT NCERT, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी,
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती है
1: जी।
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी।
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी।
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी।
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए
1: जी।
0: साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के एक शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
1: जी।
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां की है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिवार को 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई जाने का कार्यक्रम है। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इनकी कीमतें 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए तक बढ़ गई है। 19 किलोग्राम वाले ये सिलेंडर होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में उपयोग लिए जाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के दाम अब 3,113.50 रुपए होंगे। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। जून महीने को राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। मानसून पूर्व मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे महीने मच्छरों की रोकथाम और जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम होंगे। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर सोर्स रिडक्शन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंटी लार्वा उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियानों से अब तक 15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए गए 6 विशेष अभियानों से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके तहत 3,000 से ज्यादा हैंडपंपों की मरम्मत और 1,600 से अधिक पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। इसमें विशेष टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। साथ ही विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 325 अवैध जल कनेक्शन हटाए। भरतपुर में आज दुपहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने भामाशाहों के सहयोग से ये वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता बताई गई, साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मोमल।

0: मुमल कार्यक्रम सुन रही सभी प्यारी प्यारी सखियों को मैं आपकी रेडियो सखी ललिता
1: और सोनल का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। सखियों, तो सखियों आज का दिन बहुत खास है, और खास भी क्यों ना हो, क्योंकि आज है वैश्विक अभिभावक दिवस, यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। वैसे तो माता पिता के प्यार को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आज का दिन सोनल निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या को सलाम करने का है, जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है ना। और जब बात पेरेंटिंग की आती है, तो घर की जो मल्टीटास्किंग क्वीन, यानी कि हमारी जो सखियां हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनका जिक्र सबसे पहले आता है। तो आज के इस कार्यक्रम के सफर में हम बात करेंगे कि हमारी, और क्योंकि हम भी एक जननी हैं, एक महिला हैं, तो हमारी और हर उस माँ की जो बिना किसी सैलरी के, बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है। तो चलिए इस खूबसूरत जो दोपहर की शुरुआत करते हैं, और बेहद प्यारे और जो ममता से भरी हुई हमारी जो सखियां हैं, आज वैश्विक अभिभावक दिवस हम सब मना रही हैं। तो मुझे एक बात याद आती है सोनल, पहले जमाने में ना पेरेंटिंग थोड़ी अलग थी। संयुक्त तो परिवार यानी कि जॉइंट फैमिलीज होते थे, और बच्चे कब हंसते खेलते बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न जमाने का दौर है, और हमारी महिलाओं पर जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। आज की महिला जो है वर्किंग भी है, होम मेकर भी है, और इन सबसे बढ़कर एक सुपर मॉम भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल ललिता, आपने सही बोला। अगर पहले की पेरेंटिंग और अभी की पेरेंटिंग में हम अगर एक डिफरेंस देखें, एक तुलना करें, तो पहले से अभी थोड़ा सा इजी भी हो गया है। क्योंकि बात करते हैं अभी की, तो अभी के जो बच्चे हैं वो बहुत इजी होके अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अगर किसी भी फील्ड में कुछ कर रहा है, या फिर उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर आगे चल के वो कुछ बनना चाहता है, तो वो अपने मन की जो उसकी इच्छा है वो जाहिर करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को प्रेशर करते हैं, वो जो बनना चाहते हैं उससे वो बन नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक जो प्रेशर होता है चीज़ों को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा हावी होता जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से उनको समझते हैं, और उनको उतना कंफर्टेबल फील करवाना कि वो आपसे सारी बातें शेयर कर सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर माता पिता की, पेरेंट्स की बात करें, तो बच्चे के जीवन में वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। बच्चों की हम नींव रखते हैं, और उन्हें जीवन भर आवश्यक जितनी भी चीज़ें होती है उससे परिपूर्ण बनाते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की हर तरह से रक्षा करना चाहते हैं, और उनके जितने भी तरीके से विकास होता है उसको अच्छा सुनिश्चित करने के लिए अपने एक जो निस्वार्थ बलिदान की अगर हम बात करें, उनमें उनका कोई भी, किसी भी तरीके का कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा हुआ होता है। हर पेरेंट्स चाहता है कि आपका जो बच्चा है वो बड़े होके किसी भी दिशा में, जिस दिशा में वो जाना चाहता है, लेकिन वो अच्छा कर सके, कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और आज का ही जो दिन है वैश्विक माता पिता दिवस पर, बच्चे अपने पेरेंट्स को, उनके प्रति जितने भी जो कार्य किए गए हैं, उनके लिए जितने भी जो सेक्रीफाइस किए गए हैं, उनको आभार व्यक्त करने का आज का दिन है। और रियलिटी में अगर बात करें सखियों, तो माता पिता के साथ हमारा जो बॉन्ड होता है सबसे महत्वपूर्ण और सच्चा बंधन होता है, और इस दिन हम उनके समर्पण का सम्मान करते हैं और उसे संजोते हैं। जैसे कि आपने बोला, वैसे तो किसी भी दिन को इसमें बांटा नहीं जा सकता। हर दिन एक खास सुबह लेके आता है, अपने आपके बच्चे के जीवन में एक अच्छा रिश्ता होता है आपके बच्चे का आपके पेरेंट्स के साथ में। लेकिन जो आज का दिन है उसको स्पेशली इसी के लिए रखा गया। और हम में से जो लोग अपने माता पिता के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं, दोस्ती फ्रेंडशिप जैसा एक संबंध रखते हैं, और अधिकार या सख्त निगरानी के बजाय विश्वास और सम्मान पर आधारित एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने में सक्षम है, आज की डेट में वो भाग्यशाली हैं। और अच्छे माता पिता का होना वास्तव में एक आशीर्वाद ही हम कहेंगे, कि आज की तारीख में अगर आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के लिए जो कुछ कर रहे हो और आपका बच्चा रिटर्न में आपको कुछ देता है, तो वो एक आप भाग्यशाली पेरेंट्स ही कहलाओगे। आपकी पेरेंटिंग ही ऐसी होती है जो आपके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम बात करें ललिता, अभी आपने देखे होंगे IPL के मैच चल रहे हैं, और उसमें एक उभरता हुआ बच्चा, अगर हम बात करें जैसे क्रिकेटर को हम देख रहे हैं जो बहुत ही उभर रहा है, वो वैभव सूर्यवंशी का नाम आपने सुना होगा। वो 15 साल का बच्चा है, और 4 साल से उसके जो माता पिता हैं वो जब 4 साल का था तब से उस पर मेहनत कर रहे हैं, और वो 15 साल का बच्चा इतना सब कुछ कर रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये पेरेंटिंग ही होती है, और कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को शुरू से ही वो सब चीज़ें, अपना सब कुछ ख़त्म करके अपना जो सुकून है, अपना जो जितनी भी चीज़ें हैं वो दाव पे लगा के अपने बच्चे के लिए करना चाह रहे हैं, तो आपके बच्चे भी फिर रिटर्न में वो चीज़ें आपको आने पर, टाइम आने पर वो देते हैं।
0: बिल्कुल सोनल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन पेरेंटिंग के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक माँ हमेशा सोचती है कि बच्चा ठीक से सो जाए, पति ठीक से ऑफिस चले जाए, सास ससुर की दवाइयाँ समय पर मिल जाए, पर

मुझे याद आया, चलिए इसी बात पर सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, लेकिन उससे पहले ये जरूरी संदेश सुनते हैं। तो चलिए वक्त हो चला है एक खूबसूरत मधुर गीत का।

0: धन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सखियों, अगर हम बात करें हमारी डाइट को लेके, जैसे कि ललिता ने बोला कि हर जो महिला है वो अपने लिए एक विशेष स्थान रखती है, उसको जरूरी है कि वो अपनी केयर किस तरीके से करती है। और अपने लिए समय निकालना सखियों कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में इजी भी होती हैं, साथ ही साथ अपनी आपकी जो फिजिकली हेल्थ है और मेंटली हेल्थ है उसको और ध्यान देना भी सखियों बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें फिजिकल डे की, तो आजकल बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी प्रॉब्लम से या फिर यूं कहें कि बीमारियों से जूझती हैं, और उन सबके पीछे कारण होता है अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। हम अपनी डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और परिवार में ही लगे रहते हैं, सब में सबके सबका जो ख्याल है वो बखूबी रखते हैं लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। और ऐसे ही आज अगर एक चीज़ के बारे में बात करें ललिता, तो आज अगर आपको पता होगा आज है विश्व दुग्ध दिवस, अगर इसकी
1: वर्ल्ड मिल्क डे।
0: मिल्क डे, तो ये जो आज का दिन है सखियों, ये जो दूध की जितनी भी ज़रूरतें हैं या फिर उसके जितने भी फायदे हैं उस ओर इंगित करता है कि दूध जो है वो हमारे लिए किस तरीके से फायदा जो पहुंचाता है और किस लिए कितना ज़रूरी है, ये जो जानने के लिए वो है वो आज का दिन है। तो सखियों अगर हम बात करें दूध से, तो दूध की तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और जो दूध है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है, लेकिन अगर हम डाइट की बात करते हैं तो हम किस तरीके से उसको उसके महत्व को हम बता सकते हैं या किस तरीके से हम अपनी डाइट को शामिल कर सकते हैं, और ये बताने के लिए कि दुनिया भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने के लिए ही आज का दिन चुना गया है, और दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क जो डे है वो मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए दूध बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और ये हमारी डाइट में एक कितना ज़रूरी हिस्सा है, इस बात को समझाने के लिए और दूध में दूध

0: जो डाइट में शामिल करवाने के लिए जो जागरूकता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए ही जो उद्देश्य से आज का दिन हम मनाते हैं। और ललिता, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
1: बिल्कुल सोनल, दूध के विशेषताओं के बारे में आपने बताया, और जैसा कि आज 1 जून है तो वर्ल्ड मिल्क डे भी मनाया जा रहा है। लेकिन सोनल, आज मैं बात करने आई हूँ हमारी उस आधी आबादी की, उस नारी शक्ति की, जिसके बिना हमारी डेयरी और पशुपालन की दुनिया जो है अधूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी ग्रामीण और शहरी उन बहनों की, जो सुबह सूरज उगने से पहले जागती हैं, पशुओं की सेवा करती हैं, और देश में श्वेत क्रांति की जो असली रीढ़ बनी हुई है ना, वो हमारी महिलाएं हैं। और बहनों, जब हम किसी बड़े उद्योग या बिजनेस की बात करते हैं, तो सोनल आपने देखा होगा कि अक्सर पुरुषों की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के डेयरी सेक्टर की असली कमान किसके हाथ में है? हमारी बहनों के हाथ में। सुबह की पहली किरण के साथ जब पूरा घर सो रहा होता है, तब हमारी ये बहनें उठकर सबसे पहले गौ माता और भैंसों के चारे पानी के इंतजाम करती हैं, उनकी देखरेख करती है, दूध निकालती है और फिर उसे डेयरी तक पहुंचाती है। कहा जाता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, और इस गौरव को जो गौरव दिलाने वाले में लगभग 70 से 80% हमारे काम करने वाली हमारी महिलाएं बहन ही हैं। ये सिर्फ एक काम ही नहीं है बहनों, ये महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का, उनके स्वावलंबन की एक खूबसूरत दास्तान है। और हमारी संस्कृति में भी गाय भैंसों को सिर्फ पशु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना गया है। और आज के समय में डेयरी व्यवसाय सिर्फ घर के गुजारे का साधन नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। आज हमारी कई बहनें छोटी छोटी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि दुग्ध उत्पादक समितियां चला रही हैं, और वो खुद दूध का हिसाब रखती हैं, बल्कि बैंक खातों का संचालन भी करती है, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं। तो जब एक महिला के हाथ में डेयरी के जरिए खुद की कमाई आती है, तो उसका आत्मविश्वास जो है सातवें आसमान पर होता है। तो केवल एक गृहिणी ही नहीं, वो एक बिजनेस वूमन बन जाती है। और आज सरकार भी हमारी महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रही हैं, जैसे कि कामधेनु डेयरी योजना, पशुपालक के लिए क्रेडिट कार्ड्स की सुविधाएं और पशुओं को मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था। अगर हम इन सब जानकारियों से जुड़े तो अपने आप जो ये जो काम है इसको और भी बड़ा रूप दे सकते हैं। और लेकिन हमारी बहनों के काम के साथ साथ हमें कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशुओं के, अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो उनका सही पोषण, अगर हमारी गाय भैंसें स्वस्थ रहेंगी तो उन्हें सही समय पर संतुलित आहार, हरा चारा और साफ पानी मिलेगा, तो दूध की मात्रा जो है बढ़ेगी और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। और इसके साथ साथ दूध निकालते समय स्वच्छता का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि दूध जो है लंबे समय तक खराब ना हो और हमें जो है उसके सही दाम मिले। तो आज इस विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए सोनल?
0: बिल्कुल ललिता, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो हम सखियों को, हम महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम दूध की बात करते हैं तो जो एक महत्वपूर्ण रोजगार है जो छोटे रोजगारों में आता है, वो गांव की महिलाओं के लिए तो एक बहुत अच्छा रोजगार है। हम बड़ी सिटियों में देखते हैं आजकल, बड़े बड़े शहरों में जो फ्रेश दूध है ललिता, वो तो देखने में ही नहीं मिलता। हम पैकेट्स वाले दूध जो हैं बड़ी सिटी में लोग वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में गाँव के लोगों के लिए एक आजीविका का बहुत ही अच्छा साधन है। तो इसको सहेज के रखना चाहिए, इसको और आगे से आगे बढ़ाना चाहिए इस काम को। तो सखियों, अभी बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन सुनते हैं, आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस और सलाम कर रहे हैं नारी शक्ति को और उस नारी शक्ति के उस जज्बे को जो चुपचाप रहकर भी देश की तरक्की में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। तो मैं तो यही कहूँगी अपनी सभी पशुपालक बहनों से कि बहनों, आपका काम जो है ना वो छोटा नहीं है। आप देश के बच्चों को पोषण दे रही हैं, देश को आत्मनिर्भर बना रही हैं, और आज ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी आधुनिकता अपनाने की। पशुपालन के साथ साथ अगर हम दूध से बनने वाले जो दूसरे उत्पाद हैं, जैसे कि घी, मावा, पनीर या छाछ बनाने के छोटे गृह उद्योग की शुरुआत करें, तो हमारी आमदनी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। और आज जो सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़माने में हम अपने प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहकों तक भी पहुंचा सकते हैं, बस हौसला रखने की ज़रूरत है और राहें तो हैं, अपने आप बनती चली जाती है। और आज मैं एक और बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सेहत और हमारे रसोई घर और हमारे पूरे परिवार की स्वास्थ्य का बहुत ध्यान हम वैसे तो रखती हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि घर में किसी को अगर सुबह सुबह दूध पीने के बाद पेट में मरोड़ होने लगती है, गैस बनती है या पेट फूलने लगता है, तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद रात का खाना ठीक से पचा नहीं होगा या कोई मामूली गड़बड़ी हो गई होगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसका कारण दूध भी हो सकता है? वैसे तो अभी हमने दूध डेयरी की बात करी है, लेकिन कभी कभी हम इसका कारण दूध को भी बता सकते हैं। और दूध, वैसे तो हम सेहत का खजाना दूध को मानते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। सुनने में ये नाम थोड़ा अंग्रेजी और थोड़ा बड़ा सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज के समय में ये बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे, अगर कि आप वैसे सोच रहे होंगे कि आखिर ये बला क्या है, क्यों होता है ये सब, तो आपको ये आपके बच्चों को ये जो समस्या है, तो ये दूध के कौन कौन से बेहतरीन और सेहतमंद विकल्प अगर हमारे पास मौजूद रहें तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है। बहनों, कुदरत ने दूध के अंदर एक खास तरह की प्राकृतिक शुगर यानी कि मीठापन दिया हुआ है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में लैक्टोज कहते हैं। तो चाहे गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, बकरी का हो, हर दूध में एक लैक्टोज मौजूद रहता है। अब होता क्या है कि हम दूध पीते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो छोटी आंत होती है उसमें एक खास तरह का केमिकल बनता है जिसे लैक्टोज एंजाइम कहते हैं। इस लैक्टोज का काम होता है कि दूध की जो उस शुगर को पचाना और उसे शरीर के लिए एनर्जी में बदलना। लेकिन कुछ लोगों के शरीर में ये जो लैक्टेज होता है ना, ये बनना बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, जब पचाने वाला पहरेदार ही नहीं होगा तो दूध पेट में जाकर पचेगा कैसे? नतीजा ये होता है कि दूध पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता और आंतों में सड़ने लगता है और तरह तरह की हमें परेशानियां शुरू हो जाती है, और इसी स्थिति को हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस।

0: यानी कि दूध का ना पचना। अब इसमें एक बात और समझना बहुत जरूरी है जो अक्सर हमारी बहनें गलती कर बैठी बैठती हैं। कई लोग इसे दूध की एलर्जी समझ लेते हैं, लेकिन दूध की एलर्जी से ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें क्या शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है? लैक्टोज इंटॉलरेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे पाचन तंत्र यानी कि हमारे पेट की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रही होंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार में किसी को ये समस्या है, तो इसके जो कुछ लक्षण होते हैं उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर दूध पीने के बाद में या दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि खोया, पनीर, मिठाई खाने के बाद में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के भीतर आपको कुछ परेशानियां होने लगे तो आप सावधान हो जाइए। जैसे कि इसका सबसे पहला लक्षण है पेट में भारीपन महसूस होता है और बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है। कई बार पेट में मरोड़ उठना या दर्द होना भी होता है। पेट में एकदम पेट जो है गुब्बारे की तरह फूल जाता है, या फिर ऐसा मन होता है कि जैसे हमें उल्टी आ रही है, हमारा जी मचल रहा है। और कुछ लोगों को तो दूध पीते ही तुरंत दस्त यानी कि लूज मोशन लग जाते हैं। तो अगर ये लक्षण बार बार दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि हमारा जो शरीर है दूध उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो सोनल, आप क्या कहना चाहेंगी लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में?
1: बिल्कुल ललिता, जैसे आपने इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण बताए, लेकिन उन लक्षणों को हम किस तरीके से जान सकते हैं ये जानना भी, इसके कुछ परीक्षण होते हैं बहनों, जैसे कि हाइड्रोजन सांस परीक्षण होता है। रात का जो आप खाना खाते हैं तो उसमें लैक्टोज सेवन के जो बाद अगर आपने लैक्टोज लिया है तो सांसों में हाइड्रोजन के स्तर को नापा जाता है। यदि आपका हाइड्रोजन का स्तर हाई है तो आमतौर पर इसका मतलब यही निकाला जाता है कि आप लैक्टोज आपको सूट नहीं हो रहा है, आपके अंदर ये चीजें डेवलप हो रही हैं। और इसके अलावा लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें लैक्टोज अगर आपने लिया है उसके बाद समय समय पर रक्त में ग्लूकोज की जांच की जाती है। और जिन लोगों को वो सूट नहीं हो रहा है तो आमतौर पर उम्मीद के मुताबिक रक्त में आपके ब्लड में ग्लूकोज की वृद्धि ही नहीं होती है, क्योंकि लैक्टोज का पाचन ठीक तरीके से आपकी बॉडी कर ही नहीं रही है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए जरूरी है कि सबसे तो सरल उपाय यही है सखियों, कि अगर आपको दूध से एलर्जी है या दूध से कोई भी जो प्रोडक्ट्स है जैसे पनीर हो गया, इन इन चीजों से दही हो गया, कोई एलर्जी है तो आप थोड़ा सा इसका अपनी डाइट में उसको थोड़ा कम ही कर दें। और आमतौर में अगर हम देखते हैं सखियों, तो बाजार में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लैक्टोज मुक्त चीजें भी मिलती है, जैसे कि लैक्टोज मुक्त दूध भी बाजार में मिल जाता है। इसके अलावा सोया मिल्क का भी एक अच्छा ऑप्शन है। दही भी ऐसी आती है मार्केट में आजकल जो लैक्टोज फ्री होती है। इसके अलावा चावल है, ओट है, नारियल के दूध भी होता है, कोकोनट मिल्क उसका भी आप यूज़ में ले सकते हैं, बादाम का मिल्क भी आप यूज़ में ले सकते हैं। और यही है कि आप जितना अपने डाइट को मेंटेन करते हैं, जितना आप डाइट को सही करते हैं, उतना ही चीज़ें इजी होती जाती हैं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ सूट ही नहीं हो रही है उसको आप लेके और आप परेशान हो रही हैं, इससे अच्छा तो है इससे थोड़ी सी आप दूरी बना सकती हैं। और क्योंकि दूध में अगर बहनों हम बात करें, विटामिन डी का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है दूध। सब डॉक्टर से अगर हम पूछते हैं कि विटामिन डी किसमें है तो दूध इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको इसकी कमी हो जाती है तो इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं सखियों, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। और लैक्टोज सब्स्टिट्यूट जो दूध को बचाने के लिए अस्थायी रूप से जो जरूरी एंजाइम होते हैं वो देते हैं, तो उस पर जो जितनी और दूसरे सप्लीमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो ऐसा कोई बहनों जरूरी नहीं है कि आपको दूध को या दही को ही अपने डाइट में शामिल करना है, बहुत सारे और ऑप्शन हैं जिससे आप सेफ रह सकती हैं। तो ये सब चीजें करके आप जो दूध की एलर्जी है, दूध से बनी हुई चीजों की एलर्जी है, उससे आप सेफ हो सकती हैं। तो सखियों, बातें हम आपसे यूं ही जारी रखेंगे। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो सखियों, पहला कारण ये होता है कि उम्र का बढ़ना। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके शरीर पे बहुत सारा लैक्टेज बनता है, क्योंकि उनका मुख्य भोजन ही दूध होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खासकर हम महिलाएं जब 30 या 40 की उम्र पार करती हैं, तो शरीर में इस एंजाइम का बनना प्राकृतिक रूप से कम हो जाता है। दूसरा कारण है अनुवांशिक, यानी जेनेटिक। कई बार ये समस्या परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। और तीसरा कारण ये होता है कि पेट का कोई पुराना इन्फेक्शन। अगर कभी पेट में कोई बड़ी सी बीमारी हुई या आंतों में कोई इन्फेक्शन हुआ, तो अस्थायी रूप से शरीर, जो हमारा शरीर है, वो दूध पचाना बंद कर देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कि जब घर में किसी को ये पता चलता है कि उसे दूध नहीं पच रहा है, और माँ जो है, घर की महिलाएं सबसे ज्यादा चिंता में पड़ जाती हैं और सोचती हैं, हाय राम, अब इन्हें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, बिना दूध के तो इनकी हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी। तो इसके लिए जैसे हमने बताया कि दही और छाछ जो है, इसके अलावा बादाम का दूध, नारियल का दूध और ओट्स का दूध, ये सब आप विकल्प में चुन सकते हैं। और जो है, इसकी शुरुआत आप धीरे धीरे करिए। अगर आपको लगता है कि दूध में दिक्कत है, तो एकदम से सब कुछ बंद मत कीजिए। पहले ये देखिए कि क्या थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि जैसे आधा कप दूध है, पीने पर भी आपको दिक्कत होती है। कई लोग कम मात्रा में दूध पचा लेते हैं, तो खाली पेट दूध को मत लीजिए। कभी भी सुबह उठते ही खाली पेट जो है, दूध को मत पिए। दूध के साथ कुछ बिस्किट या फिर दलिया या पोहा जैसी कुछ चीजें खाइए। इससे पेट पर जो है बोझ कम पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप बाजार से बिस्किट, ब्रेड, सूप या कोई भी डिब्बाबंद सामान खरीदती हैं, तो उसके पीछे पैकेट पर लिखे जो इंटीग्रेट्स होते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। अगर उस पर मिल्क सॉलिड्स वे लिखा या मिल्क पाउडर लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें लैक्टोज है। तो अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, पेट हमेशा खराब रहता है, तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय एक बार अच्छे से डॉक्टर या डाइजिशियन से मिलकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, कोई एक बीमारी नहीं है इससे कि आप इससे डर जाएं। ये बस हमारे शरीर का एक इशारा है, जो हमें बताता है कि हमें अपने खान पान की आदतों में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। दूध नहीं पचता है तो क्या हुआ? कुदरत ने हमें बहुत सारे विकल्प दिए हैं। बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, समझदारी से विकल्प चुनिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। क्योंकि जब घर की महिला ही स्वस्थ और जागरूक होगी, तभी तो पूरा परिवार जो है मुस्कुराएगा। और बहनों, घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं होता, घर हमारी पहचान होता है, हमारी खुशियों का आईना होता है। और जब हम अपनी सेहत की बात करते हैं, तो हमारी सेहत के साथ साथ हमारे जो घर है, वो भी हमारी खुशियों का आईना होता है। और इसे सहेजने की, चमकाने की जब बात आती है, तो हम महिलाओं से बेहतर इसे कौन समझ सकता है? एक साफ सुथरा और व्यवस्थित घर, जो न केवल आंखों को सुहाता है, बल्कि वहाँ माँ लक्ष्मी का वास भी होता है और परिवार का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। लेकिन अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घर की जो है सफाई करना, और हमें बहुत बड़ा और थकाऊ काम लगने लगता है। कभी कभी कभी समझ ही नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, है ना सोनल? तो बस आपकी इस मुश्किल को सोनल आसान करने के लिए आपके लिए लेकर आई है कुछ होम क्लिनिक टिप्स। तो सोनल, आज आप अपने पिटारे में क्या लेकर आई हैं, जरा बताइए।
1: बिल्कुल ललिता, सही बोला आपने, क्योंकि हम महिलाएं हैं, तो जो हमारा आधे से ज़्यादा समय है वो तो घर की साफ सफाई और घर के कामों में ही जाता है। लेकिन अगर आप साथ ही साथ वर्किंग भी होती हैं, कोई ना कोई आप काम करती हैं, तो ऐसे में चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं, लेकिन उनको आप इजी बना सकती हैं सखियों। क्योंकि हर दिन आप थोड़ी थोड़ी सफाई करें, ऐसा नहीं है कि आप सारा ही काम साथ में लेके बैठ जाएं। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ साफ करने का सोचती हैं, तो बहुत भारी है और बहुत ही उबाऊ काम ये लग सकता है। तो बेहतर है कि रोज 10 से 15 मिनट निकाल कर एक एक एरिया की आप सफाई करें। जैसे आपने मंडे को किचन कर लिया, उसके बाद में ट्यूसडे को बाथरूम, बुधवार को आपने बेडरूम कर लिया। ऐसे करने से बहुत सारी चीजें जो है वो ईजी हो जाती हैं। सफाई की चीज़ों की अगर हम बात करें, तो अगर आप सफाई को इजी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में झाड़ू पोछा, क्लीनिंग के जितने भी सामान हैं, उसको एक बॉक्स में या एक ट्रे में डाल के रखें, ताकि आपको इजीली जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाए। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को भी शुरू से ही छोटे छोटे कामों में लगाना बहनों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में आपको मदद भी मिल जाती है और आपका बच्चा जो है वो कई बार सेल्फ डिपेंड भी बनता है। तो बच्चों को भी अपने काम में शामिल करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें छोटे छोटे काम देकर सफाई में लगा के रखें, जैसे अपने जो चीजें हैं वो सही जगह पे रखना, अपने कपड़ों को सही मैनेज करके रखना, अपने स्कूल बैग्स को, जूतों को, उनको सही जगह पे रखना, ताकि दूसरे दिन सुबह स्कूल जाने के समय मशक्कत नहीं करनी पड़े। तो इससे वो घर का काम भी सीखेंगे आपके बच्चे और काम भी आपके बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर बात करें तो रात को सोने से पहले की सफाई भी बहुत ज़्यादा काम करती है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकाल कर आप टेबल साफ कर दें, किचन का सिंक धो लें, किचन काउंटर पे कुछ फैला हो तो उसे समेट दें, ताकि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आपका जो घर है वो बहुत ही ईजी क्लीन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर छोटे छोटे टिप्स की बहनों बात करें, तो अगर आपका किचन कैबिनेट लकड़ी का है और उसमें बहुत सारे दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो इस स्थिति में आप ऑलिव ऑयल लेकर उसको अच्छे से चमका सकते हैं। ऑलिव ऑयल लकड़ी को चमकाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद करते हैं बहनों, अगर आपकी जो घर का कारपेट है और बाथरूम का जो शावर ग्लास है वो अगर गंदा हो गया है, तो उसको भी बहुत ईजी से साफ कर सकते हैं, कि आप इसमें शेविंग जो क्रीम है उसकी मदद ले सकते हैं, उससे आप इसको बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, और इसकी मदद से कार की सीट का फैब्रिक और कार की सीट को भी आप अच्छे से चमका सकते हैं। और नींबू की बात करें तो नींबू तो बहुत ही कई सारी चीज़ों में सखियों यूज़ आता है। अगर आपकी जो फ्रिज में काफ़ी टाइम से स्मेल आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हम कई बार हम फ्रिज में रख देते हैं, जमा कर देते हैं, और उसमें बहुत सारी स्मेल हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप नींबू के टुकड़े कुछ होते हैं वो काट के फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, जो स्मेल है खराब वो ईजिली चली जाती है। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं सखियों, आप उन्हें अपना के अपने जो घर की साफ सफाई है उसको बहुत इजी बना सकती हैं, और अपना जो टाइम है सखियों वो भी बहुत ज़्यादा सेव कर सकती हैं। तो बहनों बातें यूं ही जारी रहेंगी, चलिए सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

0: तो प्यारी बहनों, ये थे कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार उपाय जो आपके समय को तो बचाएंगे और आपके आशियाने को भी चमकाएंगे। तो इसे थेरेपी की तरह समझिए, और जब घर जो है ना वो साफ और व्यवस्थित होता है तो मन अपने आप शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो चलते चलते मैं बस इतना ही कहूंगी कि घर को सुंदर बनाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, काम काज के बीच में थोड़ा सा आराम भी जरूर कीजिए। तो समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली चर्चा में ढेर सारी बातें लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं ललिता,
1: और सोनल का
0: प्यार
1: नमस्कार।
0: भरा नमस्कार।

0: excellence of India's young athletes. In the under-17 Asian Wrestling Championships, India's women grapplers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze at Da Nang in Vietnam. Leading the charge, Deeksha in the 43-kilogram category and Garima in 73-kilogram category clinched gold medals. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Tripura, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and West Madhya Pradesh today. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Rajasthan till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U May Aung Hlaing hold bilateral talks in New Delhi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opens new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under-20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं ह्लाइंग ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं ह्लाइंग के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देश के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा।

0: आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा, मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
3: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
4: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
3: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपे।
5: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रुपए 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रुपए 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रुपए 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
7: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
5: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगित तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। FM बैंड 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिलेट करेंगे।

तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना। नजारों में ये दिल रुबाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती।

अपनी सुरीली आवाज की खुशबू से तमाम यादगार गीतों को महकाने वाली सुमन कल्याणपुर की आवाज साथ में मोहम्मद रफी बेटी बेटे फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं, भरत व्यास की रचना है और सतीश भाटिया का संगीत।

मेरी निगाहों में, लेकिन निगाहों से मुझको गिरा तो न तो।

धरती पे है खुशियों का राज, एक गीत मीठा सा जीवन है आज, भर में सही पर

चांद और सूरज फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों में, शैलेंद्र की रचना थी और सलिल चौधरी का संगीत। इन सुंदर गीतों के साथ मन का जला दीप सदैव प्रकाश बिखेरता रहता है। फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का आखिरी सुमन भी कल मुरझा गया, लेकिन उनकी आवाज की कशिश हमेशा दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आइए सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और रोशन की तर्ज।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने तरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जब से तुम्हें देखा है फिल्म का गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। शैलेंद्र के लिखे गीत को संगीत से सवारा है दत्ताराम ने।

है खुशी के, ये दिन दिन है खुशी के, आजा रे आजा मेरे।

सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी में एक बार का। ये है सुहाना समा प्यार का, सारी जिंदगी।

सदाबहार नगमी प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मासूम फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं, रॉबिन बनर्जी का संगीत है, आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

0: हसरत जयपुरी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम था जी चाहता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहब्बत इसको कहते हैं। यह है फिल्म का नाम, आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की है। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।
1: कह दिए हो शुम आलम तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं।

अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं।

0: जुल्फे को हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लो तो चले जाइएगा।
1: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कहिए कैसी हैं मंजरी जी आप?
0: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
0: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
0: गीत संगीत तो की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी दासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई, अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल भाई, हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छी गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना कि उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती है।
1: बिल्कुल, कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते हैं। हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
0: वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती है जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं, और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गायकी जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
0: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया
0: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
0: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी, क्यों ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है, आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हिंदी नाम से गाने गाए थे, उनकी शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।
1: बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे।

घटे चांद, लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहती होंगी।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा की कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।
3: आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की, किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं, ये चमक दमक कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नव वधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
4: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
3: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नव विवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही, और वो जब से लौट कर घर आई उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था, उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, इस गांव पर भी उन्हीं का

0: द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
2: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
2: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
2: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
1: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
2: सभी को होता है, मुझे भी है।
1: अपने को अभागिनी समझती हो?
2: हूं ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
2: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे, कितना

0: ही को शराब का भी शौक था। पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहां की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्त तेरे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
0: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करो, जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं। नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहेगा ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा, वहां कौन पूछता है। आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो गहनों से प्रेम है।
0: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून

0: चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: कल मिलने वाले हैं और
5: हिमानी शिवपुरी हमारे बतौर मेहमान कल आने वाली है और उनका सजीव प्रसारण कर
6: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं।

0: शुभकामनाएं भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सब मिल के एक समय पे इकट्ठे होंगे।
1: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें, और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं, और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहे, सभी सखी और सखा तैयार होकर,
0: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर
1: कल आएंगे पर्दे बनाने। बिल्कुल जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का, मंजरी पहले अंतराल लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखी और सखा का स्वागत है। और अब एक गीत सुन ले।
1: जी
2: हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे बाद मां हल्ले हल्ले

ये बातों में हो गए खता, देख ले हुजूर मैंने आपके वफा, बातों ही बातों में हो

0: हाँ तो मंजरी जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है, और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना, तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कहकर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं
0: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है, और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा स्नेह और अपनापन उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्चे की देखभाल करते थे लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे, तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे, कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का ताकि बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कदर करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तक को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान की जाने। और होता था कि जब माता पिता आते तो बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है, एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कार

0: की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है। पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबसे नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा बगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुख पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते तो हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन लीजिए।

0: अच्छी है, कितनी भोली भाली है।
1: पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं।
0: मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है।
1: पापा

0: हाँ
1: तो
0: तो
1: देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। ये रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबियत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं मिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: उस समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
1: नहीं होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है, इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता और इसकी विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर कि मेरे लिए तो है क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और बी12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है, बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं।
0: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

सपनों का पलना आशाओं की डोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चोरी लल्ला।

0: तो भी मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे जैसे ये चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिख कर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ी से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी है, हरी मटर 2 कप, मंगौड़ी 1 कप, मंगौड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ही, और तड़का के लिए आप

0: जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल बनाने की सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगौड़ी को और आलू को भून लें। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगौड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें। मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पीसी हुई मटर डालें और मध्यम आचार पर आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर ले, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगौड़ी डालें। सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढक कर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगौड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगौड़ी और नमूना तैयार।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
0: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगौड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
1: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती है सके, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा, पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं, कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर आटा को तैयार करें। बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए। और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तले और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मट्टी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
0: गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुके।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी को बुलाओ।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत है गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजिली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजिली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजिशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है, क्योंकि आने वाले दांत जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा,
3: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है,
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
3: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
3: ठीक है, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
3: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
3: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
0: जी।
3: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है। तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1-2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
0: छोटे बच्चों की,
3: छोटे बच्चों की एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 ईयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
0: बिल्कुल
3: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
0: ये सभी के मामले

0: चाहे बच्चे हो,
1: बच्चे हो, बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
0: टेढ़े मेढ़े ना हो,
1: टेढ़े मेढ़े घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले, तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
0: चॉकलेट
1: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
0: ओके,
1: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही हैं
0: तो हमको कहीं बाहर
1: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना, एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
1: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
0: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
1: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है वो साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की।
1: हाँ जी।
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा।
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की। डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है।
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
0: लेकिन नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्ट।
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी। उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस। फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: है,
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात है।
1: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं करी, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज हैं उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं

0: तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है, दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत दिखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, नहीं आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही, बहुत सही।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन माधो।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस,
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस,
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं। एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो,
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है, अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल,
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जोड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली,
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: वही मैं जानना चाहता हूँ,
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज,
0: ये बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी, तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस,
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने, फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है, जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, उस जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
0: बिल्कुल,
1: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
0: इसके
1: पा
0: बिना
1: रहा
0: भी चल सकता है,
1: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक, वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
0: अच्छा,
1: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है।
0: हाँ,
1: वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है।

0: एक चीज ये होती है, दूसरी चीज आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके,
0: डेंटिस्ट
1: के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं हम लोग कुएं के पास जाते
1: नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहां पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते ही गाना।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी

0: परवान कर हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवान कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना आज जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: डॉक्टर साहब जिंदगी एक सफर तो है लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
2: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
1: अच्छा,
2: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है और अगर आपके दांतों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है। उसके लिए बना है लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
1: फ्लॉस के लिए वो
2: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है, और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
1: जी,
2: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके,
2: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो। ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है। पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
2: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
2: चले, तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
2: दांतों की बीमारी नहीं है। ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके,
2: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा।
1: यस,
2: तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला है।
2: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है। ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं।
1: ओके,
2: तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
1: ओके,
2: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट।
1: ओके,
2: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहां पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस पे हो तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है।
2: Exactly, ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
2: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
2: नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड टिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
1: जी,
2: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
1: हाँ जी,
2: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के चार दांत गिर गए। बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
2: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल,
2: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
2: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है।
1: यस,
2: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
2: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
2: चीजें,
1: तंबाकू,
2: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों
2: की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुढ़ों की तरह।
1: अरे अरे,
2: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ, और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
2: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो, ये सजेशन मैं यहां दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
2: सही, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे,
1: वाह पर हम वफा करना सीख,
2: क्योंकि आप
1: क्योंकि आपने
2: करना सीख। एग्जैक्टली
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: हर गिज नथे पर हम बाबा कर ना सके।
1: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए।
2: हाँ जी,
1: जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
2: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
2: ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
1: लेवल मिलाएगा।
2: एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
1: करेक्ट,
2: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
1: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
2: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
1: यस,
2: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
1: बहुत जल्दी होने लगा ये,
2: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है, इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
1: बाकायदा,
2: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
1: और वो महंगी चीज है।
2: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो

0: अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
1: एक दांत का?
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है,
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते 110 से 115 तक।
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा,
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती है, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: Exactly.
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश भूरी से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गाने के लिए।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

युवाणी सुनने वाले सभी साथियों को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल्पना कीजिए, आप दोस्तों के साथ बाहर हैं और शाम बहुत सुहावनी है। आप सब कॉलेज के दिनों की बातें याद कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। तभी अचानक माहौल थोड़ा गंभीर हो जाए जब कोई रिटायरमेंट फंड की बात उठाता है। खुशनुमा माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और सबको याद आ जाता है कि बुढ़ापे में पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आज की दुनिया में ऐसी स्थिति आम बात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायरमेंट के लिए बचत करने के महत्व को समझने लगे हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना का परिचय, ताकि नागरिक चिंता मुक्त सेवानिवृत्ति का आनंद ले सके। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिकों की सेवानिवृत्ति संबंधी जरूरतों को पूरा करना है। यह स्वैच्छिक योजना सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में किसान, बढ़ई, प्लम्बर और स्ट्रीट वेंडर जैसे बहुत से उदाहरण शामिल हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अटल पेंशन योजना भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का प्रावधान किया जाए, ताकि व्यक्ति अपने वृद्धावस्था के दौरान आवश्यक वस्तुओं का खर्च वहन कर सके। APY योजना में 18 से 40 की आयु के लोग शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु तक पेंशन योगदान प्राप्त कर सकते हैं। योगदान राशि चयनित पेंशन की औसत राशि के अनुसार भिन्न होती है, जो ग्राहक की आयु और वांछित पेंशन राशि के आधार पर 1,000 से 5,000 प्रतिमाह तक होती है। APY के बारे में समझने योग्य मुख्य कारकों में से एक यह है कि यह समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों को एक बुनियादी और किफायती पेंशन योजना प्रदान करके उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा इस योजना में प्रोत्साहन प्रावधान भी है, जिसके तहत सरकार पात्र ग्राहकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लोगों के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है। इसका अर्थ यह है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी, जिस पर वे सेवानिवृत्ति के दौरान एक स्थिर आय के रूप में निर्भर रह सकते हैं। हालांकि पेंशन प्राप्त करने की अवधि के दौरान यदि लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी को नामित करने का अधिकार है। अटल पेंशन योजना भारत में पेंशन घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अटल पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह नियमित बचत की आदत को प्रोत्साहित करती है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक स्थिर स्रोत सुनिश्चित हो सके। अटल पेंशन योजना की पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक होने चाहिए, एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना में शामिल होने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। अटल पेंशन

0: योजना के लाभों में उच्च पेंशन राशि के लिए अंशदान बढ़ाने का विकल्प, सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी और 60 वर्ष की आयु में पेंशन भुगतान की स्वतः शुरुआत शामिल है। अटल पेंशन योजना का विवरण आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एपीवाई का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आपको एक निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि आपके द्वारा चुने गए अंशदान स्तर और योजना के दौरान किए गए कुल अंशदान स्तर पर निर्भर करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ जीवन बीमा उत्पाद गारंटीशुदा पेंशन भी प्रदान कर सकते हैं। निर्णय लेने से पहले सुविधाओं और लाभों की सावधानी पूर्वक तुलना कर लेनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए मैनुअल रूप से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एपीवाई 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर हर महीने आपको बैंक खाते में पेंशन राशि स्वचालित रूप से वितरित कर देगी। पेंशन के लिए मैनुअल रूप से दावा या आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह सब स्वचालित रूप से होता है। अटल पेंशन योजना में योगदान देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। योगदान राशि के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन पेंशन का विवरण 60 वर्ष की आयु से शुरू किया जाएगा। एपीवाई योजना के समय से पहले निकासी को आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता है। हालांकि गंभीर बीमारी, जीवन साथी की मृत्यु जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है। यदि एपीवाई में नामांकित व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है तो वे अपने एपीवाई खाते से संचित राशि का 50% निकाल सकते हैं। इससे उन्हें मुश्किल समय में चिकित्सा खर्च या अन्य जरूरी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। यदि कुछ ऐसी घटना हो जाए उनके साथ तो संचित राशि नामांकित व्यक्ति को दे दी जाती है। अगर दुर्भाग्यवश निधन हो जाता है तो ग्राहक को संचित राशि का जो नामांकित व्यक्ति है उसको उसका जितना परसेंट देना है वो उतना दिया जाता है। जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी पेंशन वार्षिक पेंशन का योगदान करना चाहिए। योगदान में देरी होने पर जुर्माना राशि बढ़ती जाती है। अपनी पूरी पेंशन प्राप्त करने और अनावश्यक शुल्कों से बचने के लिए समय पर योगदान करने का भरसक प्रयास करें। साथियों, हम अपनी इन व्याख्या ऐसे ही जारी रखेंगे आपके साथ, बट उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: जाए हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। गली, गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मर जावा जा।

کر کے تنہا یہ زندگانی, تو گئی چھوڑ کے کہانی, اب یہ آنسو

आज महल याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल, दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल। याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल।

साथियों, आप सुन रहे थे बेवफा फिल्म का ये गाना, याद रह जाती है, गुलाम अली की आवाज में। साथियों, आज तारीख है 1 जून, यानी कि आज हम मना रहे हैं विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। मिल्क डे में ये चीज है कि विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना है। विश्व दुग्ध दिवस मनाने का मुख्य कारण विश्व भर में पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक लचीलेपन का समर्थन करना है। विश्व दुग्ध दिवस महज एक उत्सव नहीं है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। दूध आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे यह बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाने वाला विश्व दूध दिवस देशों, संगठनों और समुदायों को एकजुट करता है, ताकि सतत कृषि, आर्थिक विकास और वैश्विक स्वास्थ्य पर दुग्ध क्षेत्र के प्रभाव को पहचाना और बढ़ाया जा सके। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। यह 2001 से स्टार्ट किया गया और प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देना और इसके महत्व को बढ़ाना है। यह दिवस दूध पर ध्यान केंद्रित करने, स्वस्थ आहार, जिम्मेदार खाद्य उत्पादन और आजीविका और समुदायों के समर्थन में डेयरी उत्पादों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। FAO के आंकड़ों से यह इस बात पुष्ट होती है कि 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका डेयरी क्षेत्र पर निर्भर है और वैश्विक स्तर पर 6 अरब से अधिक लोग डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं। कई देशों द्वारा एक ही दिन इसे मनाने का विकल्प चुनने से व्यक्तिगत राष्ट्रीय समारोह का महत्व और बढ़ जाता है। 2016 में दुग्ध दिवस 40 से अधिक देशों में मनाया गया था। गतिविधियों में मैराथन और पारिवारिक दौड़, बहुत सी ऐसी गतिविधियां आयोजित की गई थी जिससे कि इसका लाभ बढ़ता जाए। फिर 2017, 2018 में देश बढ़ते गए और लोगों को इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ती गई।

यह देखना है कि 2026 में यह दूध दिवस इतने बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा है कि लोगों को इसके प्रति इसकी इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह समझ में आने लगी हैं। पहले लोग इस बारे में इतना नहीं जानते थे, कुछ ही लोग इससे जुड़े हुए थे, बट अब धीरे धीरे लोगों को जागरूकता बढ़ने लगी है और लोग इस दिवस के बारे में भी जागरूक हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो हर दिन का अपना एक महत्व होता है। अगर बोला जाए कि विश्व दुग्ध दिवस का कोई इतना बड़ा अगर मान रहे हो तो मोल नहीं है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कई देशों, संगठनों और समुदायों को एकजुट करता है ताकि सतत कृषि हो सके, आर्थिक विकास हो सके और वैश्विक स्वास्थ्य पर दुग्ध क्षेत्र के प्रभाव को पहचाना और बढ़ाया जा सके। तो साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, हम बात कर रहे थे विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, जो कि 1 जून को मनाया जाता है, और उसके साथ साथ मनाया जाता है वैश्विक अभिभावक दिवस। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वैश्विक माता पिता दिवस की घोषणा की थी। तब से यह दिवस वर्ष भर के माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। माता पिता बनना एक सर्वव्यापी अनुभव है, लेकिन यह आसान नहीं है। सबसे पहले बच्चों के जन्म के पहले की कई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाली कई जटिलताओं के कारण एक स्वस्थ माता पिता का होना भी कृतज्ञता का विषय है। और भले ही हम में से कई लोगों को अपने कमरे साफ करने के लिए बार बार टोकना पसंद नहीं आता हो, लेकिन धूल मिट्टी से निपटने में मदद करने के लिए कोई ना कोई तो होता ही था। सच कहें, अगर हमने ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना नहीं सीखा होता तो वैश्विक जीवन का सामना करने की हमारी कोई उम्मीद ही नहीं होती। इसलिए आइए इस दिन का उपयोग अपने पहले शिक्षकों और पालन पोषण करने वालों को धन्यवाद करने के लिए करें, अपने माता पिता को करें और अपने शिक्षकों को। माता पिता बच्चे के जीवन में प्रकाश स्तंभ होते हैं। वे बच्चों की नींव रखते हैं, उन्हें जीवन भर आवश्यक कौशलों से परिपूर्ण करते हैं।

माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत निस्वार्थ बलिदान देते हैं। वैश्विक माता पिता दिवस पर बच्चे अपने माता पिता के प्रति उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में माता पिता के साथ हमारा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है और एक सच्चा बंधन है। इस दिन हम उनके समर्पण का सम्मान करते हैं, उन्हें संजोते हैं। हम में से जो लोग अपने माता पिता के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखते हैं और अधिकार या सख्त निगरानी की बजाय विश्वास और सम्मान पर आधारित स्वस्थ रिश्ता बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वे भाग्यशाली होते हैं। अच्छे माता पिता का होना वास्तव में एक आशीर्वाद है, परंतु अच्छे बच्चों का होना एक सौगात है। यह दोनों पक्षों के लिए लागू होता है। माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी और उनके विकास में अपनी भूमिका को महत्व को समझते हैं। बच्चे का स्वस्थ वातावरण और उचित नियमों के साथ पालन पोषण करना आवश्यक है और इसके लिए माता पिता सबसे अच्छे आदर्श होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि बच्चों को होने वाले आघात और भावनात्मक घाव उनके विकास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को काफी हद तक बाधित करते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा होते हैं। देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन पालन पोषण का आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 1980 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। इस बात पर जोर दिया कि बच्चे का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकास के अन्य क्षेत्रों को किस प्रकार व्यापक रूप से प्रभावित करता है। 9 दिसंबर 1990 को महासभा ने यह प्रस्ताव पारित कर वर्ष 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया। 1993 में यह अन्य प्रस्ताव 15 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आखिर माता पिता ही बच्चे के पहले शिक्षक और मानवीय संपर्क होते हैं। समुदाय के नेता, माता पिता, बच्चे, शिक्षक और पारिवारिक संगठन इस दिवस को मनाने और प्रभावी पालन पोषण को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। माता पिता के लिए और एकल परिवारों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। माता पिता बच्चों के लिए एक धुरी के समान है। वह बच्चों को चाहे जिस दिशा में मोड़ सकते हैं, वही एक ऐसे इंसान है जो बच्चों को सही राह पर लेके चल सकता है। हो सकता है बच्चों को भटकाने के लिए बहुत से लोग मिले, परंतु माता पिता की जो सीख होती है वह उन्हें सिर्फ उम्र भर एक उजाला देकर चलती है। आज का दिवस माता पिता के लिए समर्पित है, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

साथियों, आप सुन रहे थे चलो इश्क लड़ाएं का ये गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, जो कि भारत के एक महान राजनेता और देश के छठे राष्ट्रपति थे। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण था। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके आदर्शों और देश के प्रति उनके योगदान को स्मरण करने का अवसर प्रदान करती है। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर देश की सेवा का मार्ग चुना। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और बाद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। वर्ष 1977 में वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। नीलम संजीव रेड्डी अपनी सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा जनता के हितों को प्राथमिकता दी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया। उनका जीवन हमें सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। उनकी पुण्यतिथि पर देशवासी उनके योगदान को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और समर्पण का कितना महत्व है। नीलम संजीव रेड्डी भारतीय लोकतंत्र के एक सम्मानित स्तंभ थे। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सादा और सरल था। उनके पिता का नाम चिनप्पा रेड्डी था और उनकी माता का नाम रत्नम्मा। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा थियोसॉफिकल हाई स्कूल अड्यार मद्रास में संपन्न हुई। आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। यह उस समय आकर्षण का केंद्र बने जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया था। वह युवा कांग्रेस का सदस्य रहे। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की। इस दौरान उन्हें कई बार जेल की सजा भी काटनी पड़ी। अगर उनका राजनीतिक जीवन देखें तो मात्र 18 वर्ष की आयु में NSR नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन पूरी तरीके से त्याग दिया था। सन 1936 में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए। उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन और मद निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी संपादन करते थे। 1951 में उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सके। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एनजी रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के केंद्रीय संसदीय मंडल से भी निर्वाचित सदस्य बन गए थे। नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के 3 सत्रों की अध्यक्षता की थी और 1962 में उन्हें पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वह इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया था। 1964 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें केंद्र में स्टील और खान मंत्रालय का भार सौंपा था। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इसके सदस्य रहे। लोकसभा के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार का उन्हें गहरा धक्का लगा। वह अनंतपुर वापस लौट गए। उनका अधिकांश समय कृषि कार्यों में गुजरने लगा। एक लंबे अंतराल के बाद
वापस वह राजनीति में सक्रिय होकर उतरे और 1977 में यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और 6वीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नडियाल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनाव के नतीजे आए तो आंध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेस उम्मीदवार थे जो विजय हुए थे। उन्हें सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद भी छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रपति पद हेतु उनका नामांकन किया जा रहा था, जिससे नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। यानी कि उनमें इतनी काबिलियत थी कि उन्हें हर एक पद के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। नीलम संजीव रेड्डी श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। ऐसी महान हस्ती को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी कामयाबी और उनकी उपलब्धियों की हम मिसाल देते हैं आज की जनरेशन को कि किस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक ऐसे पद हासिल किए जो एक सम्माननीय है, जिसके लिए सभी लोग चाहते हैं कि हम वहां तक पहुंचे। ये काबिलियत उस इंसान में थी जिनका हम आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि न सिर्फ कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में एक अपनी उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। साथियों, हम अपनी चर्चा को आपके साथ ऐसे ही जारी रखेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

साथियों, आज का दिन यानी कि सोमवार का दिन हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई जानकारियां करंट अफेयर्स के साथ। आपके सामने प्रस्तुत है पूनम व्यास। भारत की जीडीपी वृद्धि दर में हल्की कमी का अनुमान। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछली तिमाही के 7.8 से कम है। इसका मुख्य कारण वैश्विक मांग में कमी और औद्योगिक गतिविधियों की धीमी गति है। फिर भी कृषि और सेवा क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि भारत अगले वर्ष तक लगभग 300 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। भारत ने पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य योगासन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करना तथा भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन। भारत 1 और 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ आदि बड़ी बिल्लियों का संरक्षण पर चर्चा

चाहूंगी। भारत स्वीडन राजनीतिक साझेदारी। भारत और स्वीडन ने 2026 से 2030 के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाते हुए अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। दोनों देश हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार पर मिलकर कार्य करेंगे। भारत यूएई के बीच महत्वपूर्ण समझौते। भारत और यूनाइटेड अरब एंटरप्राइज के बीच रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई समझौते हुए हैं। यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत का रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। राजस्थान में रामजल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के लगभग 21 जिलों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में सहायता मिलने की उम्मीद है। भारत बना आईटी सुरक्षा मानकों के वैश्विक बोर्ड का अध्यक्ष। भारत ने सीसीडीबी की अध्यक्षता संभाली है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा और आईटी सुरक्षा मूल्यांकन मानकों को निर्धारित करता है। पर भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर्यावरण के लिए हानिकारक पौधे को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करेगा, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम आपके साथ अपनी चर्चा ऐसे ही जारी रखेंगे। ले चलते हैं आपको संगीत की दुनिया में।

आज रात 10 बजे हम सुनेंगे पंकज दत्त की आवाज में, कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8 बजे, रात 9:15 पर और उसके बाद रात 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन शाम 7:30 पर। रात 8:30 पर आप सुनेंगे हरिरंग गाय गजलें सुगम संगीत के अंतर्गत। राजस्थानी लोक संगीत होगा रात 9:30 पर, कलाकार हैं हुसैन खान जैसर मेरी। शाम 6:05 पर सुनेंगे श्री राम चित्तमास गान की 84वीं कड़ी और शाम 6:15 पर होगी वंदना। ये थी हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, आइए सुनते हैं श्री राम चेतमास गान की 84वीं कड़ी।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चली।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरितमानस की 84वीं कड़ी। मुख्य गायिका कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, प्रस्तुत है वंदना। कलाकार हैं हरिओम सरण।

जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर।

कैलाशपति शिवशंकर, जय कैलाशपति शिवशंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारे शिव हर।

हरिओम शरण की गाई। इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिले की चिट्ठी, और राजस्थानी में समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: पाला भज गोविंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर

0: तो कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पाली में तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। करौली में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज हुई ओलावृष्टि से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
1: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश से ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ ओले गिरने लगे, जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में भी तेज आंधी के साथ कहीं कहीं ओले गिरे। इसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य में पिछले 3 दिन से जारी आंधी और बारिश के चलते ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे, वहीं रात का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 3-4 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। झुंझुनू में 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट का 60वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने सैनिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा भी की। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की बढ़ोतरी हुई, वहीं सेवा क्षेत्र में 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। झुंझुनू जोन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 23,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बिजली की मांग बढ़ने और सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के काम में काफी तेजी आई है। जिले में रोजाना 70 से 80 आवेदक सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिल रहे हैं। गाँव और कस्बों में शिविर लगाकर लोगों को सोलर सिस्टम के फायदे बताए गए। इसके बाद लोगों में सोलर पैनल लगवाने के लिए रुचि जागी है। बिस्कॉम के SE महेश टीबड़ा ने बताया कि जोन के 23,000 सोलर सिस्टम से 86,000 किलोवाट से ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे डिस्कॉम को कई गांवों और ढाणियों तक बिजली सप्लाई में मदद मिली है। आमतौर पर पराली को किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या माना जाता है, किंतु जिले में पराली से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके लिए मंडरेला रोड पर आधुनिक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है। इससे बिजली जरूरतें भी पूरी हो रही है, साथ ही प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस संयंत्र से हर महीने 1 करोड़ से अधिक यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला गया है। साथ ही स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि अपशिष्ट पराली का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण

0: क्षण जन अभियान चल रहा है। इसके जरिए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी के साथ जल संरक्षण के प्रयास करने पर पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से परिवादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामलों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीजों के नमूने लिए गए। इनमें गड़बड़ियां सामने आने पर दो दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही मिलावटी चीजों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग को मिलावट की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा पिछले दिनों राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर SN धोलपुरिया ने की। उन्होंने CMHO कार्यालय में बैठकर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर धोलपुरिया ने झुंझुनू जिले के 236 उच्च जोखिम वाले गांवों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने नई शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि अब उपभोक्ता और सेवा प्रदाता को सीधा पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। इसके जरिए दोनों पक्षों को मुकदमे की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी, साथ ही आपसी समझाइश से मामले को निपटाने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से हो रही प्राध्यापक कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 31 मई से 5 जून तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 56,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू जिले के पंच गौरव में शामिल नीम के पौधों को इस मुहिम में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर दिनो। 10 राज्यां माए राज्यसभा री 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटां सारू चुनाव हैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामा री देश माए सराहना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़बाऊ नुकसान रा समाचार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश माए आज खेत बचाओ अभियान शुरू करीचियो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला रा रमासिया गांव इनरी शुरुआत कीनी। ई मौके वे कहो कि दुनिया भर माए खाद रो मोल दुणो भेवण पाछे केंद्र सरकार किसाना ने सस्ती खाद मुहैया कराउणो तय कीनो है। कृषि मंत्री कहो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड नी बना सक्या किसाना सारू खास अभियान चलार है कार्ड बनाया जावेला। वह कहो कि अब खेती माए सही बुआई बीमारियां बचाव और कम बिरखारी संभावना न ध्यान रखता था का वैज्ञानिक तरीका काम लेना फैला।
2: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती में

0: या भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे, और एक बैलेंस खाद का उपयोग, वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
1: 30 जून तक चलने वाला ई अभियान रहते किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरीखी योजना वारो फायदो पात्र किसाना ताई पुगावन रा खास जतन करिया चावेला। ई अभियान रो मकसद खाद ने संतुलित तरीकाओ काम लेवन ने बधावो देवनो, किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारी टेम सर देवनो और पंचायत लेवल माथे जनता री भागीदारी तय करनो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज पानी जुड़िया हलका माए बेहतरी सारू मिशन महा री शुरुआत कीनी। वह नई दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास रवारा माए राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन कार्यक्रम माए इन री शुरुआत कीनी। इनरो मकसद पीवन रा पानी और जल संसाधन प्रबंधन, आबो हवा माए बदलाव रो सामोकरण रो बूतो और पानी ने समझदारी काम लेवन सरीखा हलका माए नुवी खोज ने बधावो देवनो है। कार्यशाला माए पानी री परेशानी आगीकरण रा तरीका ने बारा माए विचार करियो चाचियो है। ई मौका जल शक्ति मंत्रालय और इसरो जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन सारू उपग्रह आधारित अनुप्रयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियां ने मजबूत बनावन सारू एक करार माथे ही सही कीनी। राजस्थान समेत 10 राज्यों में राज्यसभा री 24 सीटों रा द्विवार्षिक चुनावी अधिसूचना आज जारी कर दी रिचि। इसा गई पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू फेंक्यो है। प्रदेश में राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करियो जावनो है। इसारू नाम पाना 8 जून तक दाखिल करिया जा सके है। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के पर्चा विधानसभा भवन रा कमरा नंबर 106 माए चुनाव अधिकारी समी समारा 11 दोपहर 5-3 बजे तक दाखिल करिया जा सके है। नाम पानारी जांच 9 जून न करी चावेला। पर्चा 11 जून न दोपहर 5-3 बजे तक पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न वोट पड़ेला और सिंजा 5 बजे पाछे वोटा री गिनती करी चावेला। ध्यान योग है कि राजस्थान राज्यसभा सदस्य भाजपा रा रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस रा नीरज डांगी रो कार्यकाल 21 जून न पूरो फेरियो है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरूभिया आज 6 बरस पूरा फेंक्या। साल 2020 माय आज हीरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी शुरुआत कीनी ही। इनरो मकसद रेहड़ी पटरी वाला न आसान कर्ज मुहैया करावनो है। योजना रे जरिए हाल ताई 75 लाख बत्ता लोगों ने 17,800 करोड़ रुपया रा कर्ज दिया चिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सागे मुलाकात कीनी। ई मौके दोनों नेता जनता रा भलाऊ जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा और आवती कार्य योजना रे बारा में चर्चा कीनी। पुलिस महकमा माए मकान रहवास रो काम देख रहा एडीजी भूपेंद्र साहू बालोतरा जिला माए अपराध और कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लीनो। वे पुलिस वाला सागे मीटिंग कर वारी समस्यावां री जानकारी लीनी। श्री साहू बालोतरा पुलिस थाना रो दौरो कर सीएलजी सदस्यों ही जानकारी लीनी। ई मौके खबर नवीसा सागे बातचीत करता था काम वे कहो के जिला माए जरूरी साधना री पूर्ति वेगी करी जावेला। एडीजी कहो के पुलिस लाइन सारू जमी आवंटन री कार्रवाई कर दी रिची है। श्री साहू कहो के पुलिस माए नुआ भर्ती भया कर्मचारियां री सिखावन पाछे तैनाती कर नफरी री कमी दूर करी जावेला।
2: देखिए पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन। तरीका से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए एक साथ ही 30 सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस मुख्यालय का ध्यान है, वो उपलब्ध कराए। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली से वृद्धि।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार का नियम कराया चाहिया नुआ नुआ कामारी कामयाबी री कहानियां तैयार करने रा हुकम दीना है। वह आज जयपुर माए अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो के प्रदेश माए ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माई भारत और राज उन्नति सरीखी सरकारी कोशिशा ने देश भर माए बेहतरीन कोशिशा रा तौरों पिछाण मिली है। मीटिंग माए प्रदेश माए खनिजा री खोज, नीलामी प्रक्रिया, पीवण रा पानी री उपलब्धता, साफ सफाई, पाना तून जुड़ी परियोजनावां और ऊर्जा हलका माए सुधारा रा बारा माए चर्चा करी जी। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रा कामकाज रोई जायजो लीनो। वह राज्य री स्कूलों माए विद्यार्थियों ने पौष्टिक भोजन मुहैया करावन सारू अहलकारा ने लगातार जांच रा हुकम तीना। झुंझुनू जिला रा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायो जावेला। इन सारू शिक्षा मंत्रालय 13 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग इरा काम रो आज भूमि पूजन कीनो। इ मौके विधायक भांबू कहो के मंत्रालय झुंझुनू समेत राज्य रा 7 डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनावन रो फैसलो कीनो है। झुंझुनू माए जाट रेजिमेंट री 17वीं बटालियन रो 60वां स्थापना दिवस समारोह उमाव सागे मनाई चियो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग फौजियां सामने आवन वाली चुनौतियां अरवारा निपटारा रवारा माय चर्चा कीनी। कार्यक्रम में पहले वाला अर मौजूदा फौजी अर फौजियां रा परिवार वाला शामिल थिया। अर बे मौसम प्रदेश रा बीचला अर उगनी जिला में आज ही आंधी बारिश रो सिलसिलो चालतो रहो। राजधानी जयपुर माए सिंजानी पोर बादला मंड गया और कुछ हल्का माए छांटो छिड़को भयो। अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और सीकर जिला में आई जोरदार बायरो बजन सा गए। कठे कठे हल्की बारिश हुई तो कठे कठे ओला पड़िया। पाली माए बाजा जबरदस्त बायरा रे कारण कई रूखड़ा उखड़ गया और बिजली रा खंभा पड़ गया। करौली माए दोपहर पाछे बिरखा हुई जिनू गर्मियों थोड़ी साता मिली। दूजगानी नागौर माए ओला पड़माऊ कपास री साख और सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ने नुकसान।
3: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश से ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
1: चित्तौड़गढ़ में आई तेज आंधी आवन सागर कठे कठे ओला पड़िया। बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद समेत कुछ जिला में जोरदार बायरो बाजन सा के छांटो छिड़को भेवन रा समाचार है। राज्य रा घणखर हलका में लारला 3 दिनों चाल रहा आंधी और बारिश रा सिलसिला दिन री बगत पारो 40 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो जबकि रात री बगत ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 1 सप्ताह ताई प्रदेश में आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रेवन रा आसार है। 3-4 जून ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश माए ओजु बढ़ोतरी री संभावना है। वस्तु और सेवा कर GST री मद माए लारला महीना 1,94,000 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेड़ी करी ची। लारला साल मई महीना माए आ रकम 1,88,000 करोड़ रुपया ही। इन अवधि रे दौरान सामान री कर योग्य पूर्ति माए 26.9% जबकि सेवा हल्का माए 22.2% री बढ़ोतरी दर्ज करी ची। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों CEPA आज लागू है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

0: गोयल बतायो के इन करार उन दोनों देशों में माली और रणनीतिक रिश्ता और मजबूत बनेला। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी में नई तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवन माथे जोर दिनो। 10 राज्यों में राज्यसभा 24 सीटों रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश में 3 सीटों सारू चुनाव भेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश में सराहना भी। प्रदेश का कई जिला में आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़वाऊ नुकसान रा समाचार। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र FM 101.8 MHz पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: पहली शपथ ग्रहण रहे मैं आप रहे मैं लाल किले से जो भाषण दियो और बाद में कही कि भाई हर घर सो शुरुआत हुए और हर घर सो नहीं पहले सबसे पहले म्याड़े खुद सो शुरुआत हुए। तो म्याड़े कार्यक्रम के माध्यम से भी है कि जैसलमेर एक पर्यटन शहर है और इस पर्यटन शहर में स्वच्छता के माध्यम से जिके तरीके से आप तो कदे इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में है वहाँ अगर कहते कहने जाओ मौको मिली हुए तो आप इंदौर देखो जो पूरे भारत में स्वच्छता है प्रथम स्थान प्राप्त करे। और बात अगर राजस्थान नहीं करो तो डूंगरपुर राजस्थान में एक जिलो है वो में भी जैसलमेर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करे। और कारण है कि लोग पूरा बहुत समझदार है गीला सूखा कचरा अलग अलग तरीके से डाले और आपने घर रहे मोए सफाई रखे आपने घर रहे गली में सफाई रखे आपने शहर न साफ रखे कोई भी गुटके रो या ये तरीके रो पीक को नहीं थूके। तो कहने का मतलब ए आपो एक दायित्व है भाई जिके तरीके से आपो अपने परिवार में दायित्व निर्माण करा जैसे आपो एक परिवार में अपने माँ बाप री दादा दादी री या और भी कोई बच्चों और एक दायित्व निर्माण करा वही तरीके से मन लगे कि स्वच्छता रे माँ भी अपना स्वच्छता रे माँ में भी आप निर्माण करना चाहिए। विशेषकर ग्राम पंचायत का जो मुखिया है जिके आप सरपंच कहें क्यों नहीं आप घर से सरपंच आप शुरुआत करें और एक जन जागृति पैदा करें और हो सके तो जन जागृति रे वधु स्वयंसेवी संस्थाओं और समूह बनाए के हर गांव गांव ढाणी ढाणी रे वहाँ एक बच्चों के साथ में एक रैली निकाल के और ये बच्चों के साथ में बैठ के कि भाई हर घर से शुरुआत हुए तो क्यों नहीं वो गांव एक मॉडल रूप रे मोए काम आवे और वो मॉडल रूप पूरे राजस्थान रे मॉडल रूप हुए और पूरे राजस्थान स्वच्छ भारत रे बहुत अच्छो।
1: देखो स्वच्छता में बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रख सो तो आप ये ना पार पास हो। सबसे पहली बात तो अगर आप और हाथ से कोई भी कचरो है वो कूड़ेदान में जावे और जो आप अरुण भाई बताए हो कि गीलो कचरो गीले कूड़ेदान में सूखो कचरो सूखे कूड़ेदान में पहली पहल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखा करें कि आप और आस पास जो है घरों बाहर जब आप खान पान हो जब आप खान पान जो है व्यर्थ हो जाओगी तो आप उन्हें फेंकिया करो तो कई बार लोग जो है घर आस पास जो है सीधे उन्हें फेंक दिया करे वो भी जो है गंदगी पैदा करे उस मच्छर पैदा हुई या फिर कोई पौनी है जो बचोड़ो नड़े नाली में और सफाई नहीं हुई तो उस कर भी जो है स्वच्छता ना जो है फर्क पड़िया करे।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बातों ना पर रक्षा जारी सुर सुर राजस्थानी लोकगीत।

0: तो
1: मनोज
0: देख,
1: भाई, जिगे तरीके से राजस्थानी लोकगीत सुनियो। उस पहले आप बात करिया था ग्राम स्वच्छता और वुमे अपोरो सपरो दायित्व। बिल्कुल, अपोरा जो को किसान भाई है, एक जिम्मेवार व्यक्ति है, और अपोरा ग्रामीण जो को है, विशेषकर ग्रामीण जो को है, वो जैसलमेर और बाड़मेर तो बड़ा एकदम, मतलब बाड़मेर जैसलमेर वैसे भी साफ सुथरा है, क्योंकि बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल दृष्टिकोण बहुत बड़ो जिलो है बाड़मेर और जैसलमेर। तो ही फिर भी लोग जो है जैसलमेर शहर में या और भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग है, तो मना लगे कि भाई क्यों नहीं ये कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप हमारी गांव ढौणी में जेत भी हमारी बसावट है वो एक प्रॉपर तरीके से बसावट है, और जो पानी और निकासी हुए वो बढ़िया तरीके से हुए, और एक गांव रे डंपिंग यार्ड जिकन आप कपड़े दिशा अपना एक स्वच्छता और अलग डंपिंग यार्ड बना, वो वापिस वेस्ट भी डाल दे, क्योंकि हर ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायती राज मंत्री और केंद्र सरकार योजना और एक तरीके की योजनाओं भी आई, वो तो योजनाओं का लाभ भी ले, और जैसलमेर एक एडो एक ग्राम पंचायत बनावे के भाई वो एक जैसलमेर नहीं पूरे भारत रे मोए देश का प्रधानमंत्री जी हो सके, तो मन भी बात में भी बात री बात करे कि भाई एडो जैसलमेर ग्राम पंचायत एक स्वच्छता रे वास्ते हो हर बच्चों से लगाए और बुजुर्ग तक हुए रे मोए आपरो दायित्व निभावे।
0: देखो, यह तो बढ़िया बात बताई, लेकिन आज जो आप शुरुआत में बात करी खेती बचाओ अभियान के तहत, 1 जून, 1 जून जब आई तो आपो जो है कार्यक्रम जरे कोई भी दिवस आया करे तो मत जरूर चर्चा करे करो। आज जो दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में भी जोड़े जाओ। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों के अधिकार और रक्षा, उनका कल्याण और उन्हें सुरक्षित और खुशहाल माहौल देने के प्रति जागरूकता फैलाना। ये जो शुरुआत है 1925 में जिनेवा में बाल कल्याण विश्व सम्मेलन दौरान की गई। 1950 जो है 1 जून ना पारंपरिक रूप से जो है दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जावी, वही कड़ी में जो है 1 जून ना वैश्विक अभिभावक दिवस श्री भी जो है स्थापना हुई। दुनिया भर में माता पिता के प्रति हमारे निस्वार्थ प्रेम बलिदान और बच्चों के पालन पोषण और योगदान और जो सम्मान देने वास्ते वैश्विक अभिभावक दिवस भी मनाया जावी। 17 सितंबर 2012 ना संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है एक प्रस्ताव पारित कर हर साल 1 जून ना वैश्विक अभिभावक दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: बिल्कुल, आज 1 जून है और 1 जून आप अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि मनोज भाई जिके तरीके से आप बाल दिवस मनाओ और विशेषकर जो को आप जो छोटा नवजात बच्चा जो आप 8 साल से 10 साल से लगाए 18 साल के बीच उम्र जो को बच्चा है वो ना आजकल जो को है वो जब शिक्षा के दृष्टिकोण से पीछे रह जाओ या गरीबी से कारण पीछे रह जाओ, तो उम्र केतन के जो है वो शोषण हुई, और शोषण के साथ साथ में कई एडा पूंजीपति लोग है उमरों कम समय रे उमर वेतनवान दे के उमर काम काम भी करा हुई, तो सरकार हमेशा समय समय में ये तरीके रा बाल कल्याण समितियां वगैरह तरीके रा कॉल सेंटर बनोड़ा है, और आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है तो बच्चों रे साथ साथ में बच्चों री ग्रोथ की करवे, बच्चों रो माइंड जो है दिमाग है वो कई तरीके से हुए, क्योंकि बच्चा जो है वो एक 12 या 15 साल तक बच्चों ने शिक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ में एक मानवीय व्यवहार पूरे साथ साथ में वो जो दिमाग है वो कई तरीके से हुए, और रुचि कई जगह है भाई, हर बच्चों सरकारी नौकरी भी कोनी हुए, तो कोई प्लेयर भी बने, तो कोई संगीतकार भी बने, तो कोई एक्टर भी बने, तो कोई हवाई जहाज उड़ाने वाला भी बने, तो कहने मतलब ये तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में आप आज बात जो कर रहे हो वो एक शुरुआत जो आप बताई जगह तरीके से एक विदेश में जमे जमने वाला हुई, और उसके साथ साथ में पूरे भारत में भी आज रो दिन जो है वो 1 जून के साथ में आप अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया करें, कहने मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मतलब यही है कि बच्चों ने कई तरीके से बढ़ावा मिले, बच्चों की शिक्षा कई तरीके से मिले, और बच्चों का शोषण नहीं हो, और बच्चों के साथ रहे मैं उमरी जुको उमरी उपयोगिता जिके समय मत उमरी है उन्होंने ली जाओ, तो बहुत बड़ी बात है 1 जून वास्ते ई वास्ते एक समय जो रखे हुए वास्ते भी बहुत कोई न कोई कारण और विषय रहे उसे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये भी बात रखी, राष्ट्रीय स्तर में भी कई तरीके का कार्यक्रम आज दिन

पूरे भारत और हर जगह आयो है, जैसे नेहरू युवा केंद्र वगैरह इस तरीके का कार्यक्रम हर जगह होया करे, हर सरकारी जगह भी हुई। तो उसके साथ साथ जो आज एक दिन और भी है जिकन आपको कहीं वैश्विक अभिभावक दिवस, बिल्कुल जैसे बाल दिवस है तो वैश्विक अभिभावक दिवस है, क्योंकि बच्चों ने मतलब अगर कोई मॉनिटरिंग करने वाला तो सबसे पहले अभिभावक माँ है और बाद पिता है, वही तरीके से अभिभावक दिवस भी आपको मनाओ। तो कहना मतलब आज जो को विषय है और जैसलमेर आप ग्राम जगत कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छो विषय आप रात आए हो, जैसे खेत बचाओ अभियान हो, आप खेत न कौकर बचाओ है, स्वच्छता में आप की दायित्व है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस में आप की भूमिका रही, आप बाल दिवस में बच्चों ने कई तरीके से पढ़ाना है, ज्यादा 5 साल से पहले बच्चों ने स्कूल भी नहीं भेजना क्योंकि 5 साल से जो उम्र है उन्हें खेलना और कूदन और वो मस्ती के विकास भी हुआ करे, तो बाद में उन्होंने स्कूल भेजना है, पूरे साथ साथ में अभिभावक दिवस की बात है। तो कहना मतलब बहुत अच्छी बात आप बताई, सुनसो आप एक राजस्थानी लोकगीत और चर्चा आप जारी।

तो देखो भाई, आप सुनिए बढ़िया राजस्थान लोकगीत। मौसम में परिवर्तन है, आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हो हल्की धूल भरी आंधी अभी चल रही है। कुछ कुछ जगह जो है मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखना मिल रहे है। तो देखो भाई, समय हो गया है या सलेसो थोसुसी और गणा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी का, ये जैसलमेर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन, राग है हेम बिहाग।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन राग थी हेम बिहार। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किसी दुनिया दीवानी। कहाँ रे रही माला।

बदला चाहता रोज मगर बढ़ता जाए मारवा।

प्रेम पुजारी ये था फिल्म का नाम। गायक कलाकार और संगीतकार थे एस डी बर्मन। अगला गीत गा रही लता मंगेशकर, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

से झुक जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी।

जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी, ये कर देंगे दीवाना, कोई इनको ना बतला।

0: करती रहे हैं सभी।
1: ये थे मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था दो रास्ते। अगला गीत हमने लिया है फिल्म लावारिस से, जिसे गा रहे हैं किशोर कुमार। गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ वो खुदा ही जाने, अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे, काहे पैसे पे इतना गुजूर कर है, काहे पैसे पे।

ही है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान इंसान है, पैसा

है ये जहर भी है ये नशा भी है ये जहर भी है ये नशा भी है ये नशा कोई

प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है, फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, किस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, आप बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं, अरे पैसे से क्या क्या तू यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान।

का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे, इन जमीनों का मोल हो शायद आसमानों का मोल क्या दोगे, पास पैसा है।

दिमागों में ये दिमागों करे है यही पैसा तो करे है दूर करे है काहे पैसे पे कितना गुरूर करे है।

का बादशाह हसीन का गुलाम हॉकी मेरा नाम हॉकी मेरा नाम हॉकी मेरा नाम।

फिल्म का नाम था रॉकी। गायक कलाकार थे किशोर कुमार। संगीतकार थे आर डी बर्मन। इस गीत के साथ ही महाराज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। दोस्तों का सलाम, दुश्मनों।
1: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत में सुनते हैं हरिहरन की गाई कुछ गजलें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं रुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की, एक दूसरे के सुरक्षा हितों के

0: के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू, भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल, और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक

0: खबरों से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1444 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्क्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया की घटनाक्रमों दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों की विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए, 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है।

0: प्रदेश की एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए भी इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल की चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-1481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता राजस्थान भारतीय निर्यातों को ओमान की 98% शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा और सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल, और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार Oh my God.

जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, ये था फिल्म का नाम। गायिका थी लता मंगेशकर, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पत्थर के सनम, आइए इस फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश को। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कोई भी खुद सा नहीं है महबूब मेरे,
1: ओ महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया इतनी हसी है।

याद रखना मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली

मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, यही जान दे देंगे हम याद रखना, मोहब्बत की पहली

एक बार मुस्कुरा दो ये था फिल्म का नाम। गायक कलाकार थे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथ ही संगीतकार थे ओपी नैयर। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM 101.8 MHz पर। राजस्थानी लोक संगीत

हुसैन खां जैसलमेरी गाए इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। सुगम संगीत में आइए सुनते हैं पंकज उधास की गाई कुछ गजलें।

पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम था ससुराल। गायक कलाकार थे किशोर कुमार और हेमलता। संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। लव इन टोक्यो यह फिल्म का नाम। गायिका हैं लता मंगेशकर, संगीतकार हैं शंकर जैक्सन। आइए सुनते हैं ये गीत।

यूं रहे। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और

से पर्दा जरा जो से रखने लगा, रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, उफ ये कम वक्त दिल क्यों धड़ा।

महबूब की मेहंदी, ये था फिल्म का नाम। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अंजलि से, जिसे गा रही लता मंगेशकर, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म लोफर में ये थे मोहम्मद रफी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कोहरा से, जिसे गा रही हैं लता मंगेशकर। गीत को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

फिल्म का नाम था कोहरा, गायिका थी लता मंगेशकर, संगीतकार थे हेमंत कुमार। इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के
2: तनु शर्मा अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's neighbourhood first at East and Mahasagar policies. welcoming Myanmar President U Minong Lian at Rashtrapati Bhavan today. President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The president said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Liang on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration and futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. BJP National President Nitin Naveen today held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for thunderstorms conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जैसलमेर है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली सभा कल दिन के 11:55 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।